फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala, Brasa Milaves. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasafest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.

यूवर उजाला रेडियो है, कॉफी चाय मिदा शो यहां से शुरू किया गया है। आपके वास्ते अंबेज लात मार हम लोग आगे लेगा। चलिए प्रोग्राम में हम आपको सुनाने को जा रहे हैं किरण केदार के आवाज में हम किरण केदार मेड बैंड ओका वेज ऑफ उजालास ब्रासा फेस्ट 29 एंड 30 अगस्त जिया इवेंट सेंटर में। यस ब्रासा फेस्ट।

उजालार ब्रासा मिला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में फूड म्यूजिक डांस शॉप मार्केट कल्चर फैमिली एंटरटेनमेंट टेस्ट बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स ब्रासा फेस्ट जाटरडाग 29 एंड जोंडाग 30 अगस्त इन जिया इवेंट सेंटर हे यू

बने रहिए उजाला रेडियो पर, म्यूजिक बोलता रहेगा आपके घरों में, आपके मोटरकार में या जहां पर भी आप हैं।

छह बजकर 12 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, उजाला रेडियो है ये और मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे। सभी प्रिय सुनने वालों को हम स्वागत करते हैं तहे दिल से, आप सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और आराह पर से। बुधवार आज 22 तारीख जुलाई और मौका फिर मिला है आज सेवा करने का आप सभी का, तो अब से रात्रि में 9 बजे हमेशा की तरह पेश करेंगे प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर, एक प्रोग्राम जिसके साथ हम हमेशा कुछ पुराने यादें जो हैं संगीत के जरिए हम पेश करते हैं और उन पुरानी यादें जो इन संगीत के साथ जुड़े हुए हैं हम और आप मिलकर फिर एक बार ताजा करेंगे। और क्योंकि आज प्रोग्राम हम बना रहे हैं और आज का दिन द ग्रेट महान मुकेश चंद माथुर, मुकेश जी का आज भी जन्म का दिन है, या अगर जिंदा होते तो 103 साल आज होते हमारे प्रिय मुकेश जी। 103 है फंदाख वर्ड से। तो हमने सोचा प्रोग्राम हम तो बना रहे हैं आज, तो क्यों ना आज पूरा का पूरा हमारा ये प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर मुकेश जी के नाम, उनकी याद में उसको श्रद्धांजलि देने के लिए प्रोग्राम सजाया जाए। तो ऐसे हम करेंगे मेरे प्यारे सुनने वालों। और आपके मालूमात के लिए ये भी मैं बता दूं कि ये साल जो है 2026 अगले महीने अगस्त का जो महीना है और वो भी 27 तारीख से इवनंतविंद खौखस, तो पूरे 50 साल होंगे जबकि मुकेश जी हमें छोड़कर बहुत ही दूर चले गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी खूबसूरत यादें, उनकी खूबसूरत संगीत और कुछ फिल्में जो इनमें इन्होंने काम किया है उनकी याद बढ़कर हमारे पास है और लोगों को अभी तक, आज तक भी, कल भी रहेंगे, इनके संगीत काफी पसंद करते हैं। तो आज का ये दिन मुकेश जी के नाम और वो दिन जब होंगे उनके 50 साल कि वो हमारे बीच नहीं रहा। सेव नंतविंद खोखुस्स दनिस दाताल सत खुतिस अन दोंदरदख, तो उस दोंदरदख को भी मुकेश जी के नाम से बनाएंगे, सजाएंगे प्रोग्राम दिल की आवाज। और गाने कुछ ऐसे होंगे मेरे प्यारे सुनोला आज मेरा पसंद होगा क्योंकि बहुत जल्दबाजी में हमने चुन चुन कर गीत लाए हैं और मैंने ऐसे देखा कि हाँ वो मुझे पसंद, वो गीत पसंद है, अरे कौन सा गीत मुकेश जी का है ऐसा जो हमें पसंद नहीं हो। तो लिस्ट में आ गया पूरा का पूरा 300 उसी में से हम निकालेंगे नगमाएं मेरे प्यारे सुनने वालों और आप तक पेश करेंगे। बुरा मत मानिएगा अगर ये 3 घंटे का प्रोग्राम में आपका फेवरेट सॉन्ग चलाया नहीं गया है, मुझे अभी से माफ कर दो। तो मेरे प्यारे सुनो लो, हमारे ये प्रोग्राम के दौरान नतुर्लक हमेशा की तरह व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं स्टूडियो में 020-363-0000 और आपके हर एक जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते आपके कामोकाज के लिए जैसे कि फरमाइश से जरूरी खबरें, मौत की खबरें, उजाला रेडियो को आप तार कर सकते हो। दफ्तर का नंबर, दफ्तर का दिन, दफ्तर के वक्त पर आप इस्तेमाल करें 020-409-0007 सोमवार से शनिवार सुबह में 10 बजे शाम में 3 बजे तक 020-409-0007 या तो मेरे प्यारे सुनवालो लगातार 24 घंटे मेल के जरिए info@ujala.nl आप अपना कामों का अच्छे दिवा सकते हैं, जानकारी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। पहले फिल्म का ओवर हम आपको ले चलेंगे मेरे प्यारे सुनवालो और ये फिल्म का 2 नगमाएं निकालेंगे आप तक जो हम पेश करेंगे मुकेश जी का। और आपको मालूम रहे कि दूसरा गीत जो पेश करेंगे फिल्म का टाइटल सॉन्ग है
फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनी था मुकेश जी। और मुकेश जी ने अवार्ड भी जीता है, लेकिन मुकेश जी हमारे बीच नहीं रहा। फिल्म जब रिलीज हुआ तो मुकेश जी उस साल गुजर गए थे। फिल्म का नाम कभी कभी मेरे प्यारे सुनने वालों, दो नगमाएं, हमारे प्रिय सही लुझानवी जी का लिखा हुआ पहला नगमा, मैं पल दो पल का शायर हूं। आप सुनेंगे खयाम की साज और संगीत पर मुकेश जी गीत गाएंगे, और उसके बाद में मुकेश जी का नगमा कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, और जहां तक मेरा ख्याल है अमिताभ बच्चन भी कुछ कहेंगे शुरुआत में। तो बता आप मजा ले मेरे प्यारे सुनने वालों, शुभ रात्रि आप सभी को कहते हुए एंड एंजॉय।

कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाओं में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो ना सका। मगर ये हो ना सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हमनफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।

0: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, और उससे पहले मेरे प्यारे सुनो, मैं पल दो पल का शायर हूं। दो खूबसूरत नगमाएं और ये आखिरी जो था फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता है। मुकेश जी का गाया हुआ दो खूबसूरत नगमाएं जो हमारे प्रिय सही लुधियानवी जी ने लिखा है। खयाम थे संगीतकार मेरे प्यारे सुनने वालों, कभी कभी फिल्म का नाम। और जैसे मैंने कहा, जब फिल्म रिलीज हुआ उन्हें इतने बड़े अवार्ड भी मिले तो मुकेश जी हमारे बीच नहीं रहे। ये फिल्म यश चोपड़ा जी का डायरेक्ट किया हुआ है, और अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, वहीदा रहमान जी, ऋषि कपूर, राखी परीक्षित, सहनी, नाजिम बानू, सिमी गढ़वाल, नीतू सिंह, देवन वर्मा, इफ्तिखार, इन सभी का एक बहुत ही खूबसूरत मूवी है जो आप तक हमने पेश किया है। फिर एक बार स्वागत करता हूं मेरे प्यारे सुनने वालों। मैं देखता हूं धीमी धीमी सी बारिश भी होने लगा है स्टूडियो के बाहर, और स्टूडियो रोटरडम, उजाला रेडियो के स्टूडियो रोटरडम से स्वागत करता हूं आप सभी को फिर एक बार। आज इस बुधवार के रात्रि का जो प्रोग्राम है, हम सजा रहे हैं लाइव एंड डायरेक्ट ये स्टूडियो रोटरडम से बैक टू द फ्यूचर, जो आज पूरा का पूरा, क्योंकि उनका जन्म का दिन है, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मुकेश जी का प्रोग्राम आज रात्रि में 9 बजे तक। अगले गीत मेरे प्यारे सुनो, ये भी नॉमिनेट थे फिल्म फेयर अवार्ड के लिए। अफसोस गीत जीता नहीं, लेकिन यकीनन आप सभी पसंद करेंगे क्योंकि गीत काफी पॉपुलर है। एक नगमा जो आनंद बख्शी जी ने लिखा और काफी रोमांटिक भी सॉन्ग है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल संगीतकार और सत्यम शिवम सुंदरम का एक नगमा, 1978 का फिल्म है, नीति नाखतन सीवंत। मुकेश जी को पेश करता हूं कि चंचल, शीतल, निर्मल, कोमल, संगीत की देवी, स्वर सजनी।
1: चंचल,
2: चंचल,
1: शीतल,

देवी, चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी, स्वर सजनी, हार्ट ऑफ मिलियंस, मायती मुकेश जी की आवाज, मेरे प्यारे सिनेमालो, खूबसूरत नगमा, फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनी सॉन्ग आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ, मुकेश जी ने गाए हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की खूबसूरत साज और आवाज पर। एक फिल्म जो निगहती नख्तन सेवन तक का है, राज कपूर ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया है, इनके छोटे भाई डगरेत शशि कपूर जी ने काम किया है सिनतमन जी के साथ, पद्मिनी कोल्हापुर। और या मूवी फिल्म हम और कुछ नहीं कह सकते, बहुत खूबसूरत मूवी है ये। मेरे प्यारे सुनो, आपको मालूम रहे कि अन्नू मलिक जी के प्रोग्राम 3 हमने सजाए थे, आज भी सजाने वाला था क्योंकि 2-3 प्रोग्राम और उनका बचा है। आज कुछ हफ्तों के लिए आखिरी बैक टू द फ्यूचर हम पेश कर रहे हैं, द बेनेकर द कोमन ट्वे वे कनीत ऑफ द वून्स द। हम आप सभी के सेवा में फिर हाजिर रहेंगे 12 तारीख अगस्त को, तब फिर अन्नू जी के प्रोग्राम हम सजाएंगे क्योंकि आज आखिरी है द बेनेकर ट्वे वे कनीत। एंड ऑन 12 अगस्त फिर हम बैक टू द फ्यूचर पेश करेंगे। एक है पता लीन ओवर बैक टू द फ्यूचर, क्योंकि कल मॉर्गन आवंट दन बेनेकर एक फॉर इट लाट्स दन वन प्रोग्राम दिल की आवाज भी हम पेश करेंगे रात्रि में 8 बजे से 11 बजे सेवा में। और आज मुकेश जी का प्रोग्राम हम सजा रहे हैं क्योंकि आज मुकेश जी का जन्मदिन है, 103 साल होने द्री यार सो है फंडा वर्ड सेम, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी याद में उनके खूबसूरत खुद का गाया हुआ गीत आप तक हम पेश कर रहे हैं और सभी पॉपुलर है, सभी जानी पहचानी है, तो आप भरपूर एंजॉय करें। और अनु मलिक जी का जो प्रोग्राम है बाकी हमारे फकांसी के बाद 12 तारीख अगस्त से जबकि हम हाजिर रहेंगे, तो फिर अनु जी का 2 प्रोग्राम चालू करेंगे। ठीक है, अगले मूवी का नाम मेरे प्यारे सुनो परमात्मा, और परमात्मा भी नहीं खती नख्तन सेवन तक का मूवी है। एक गीत इंदवर साहब जी का लिखा हुआ, मुकेश जी गाएंगे बाबूजी की साज और संगीत पर, कि साथ किसी की कोई कब आता है।

साथ किसी के कोई कब आता है और साथ कभी किसी के कोई कहां जाता है। हार्ट ऑफ मिलियन समाये थे मुकेश जी इंदवर का लिखा हुआ गीत। मुकेश जी ने गाकर सुनाए हैं बाबूजी की साज और संगीत पर। फिल्म का जो डायरेक्टर है चांद और शतगोन सुदुर्गन सिन्हा, रेखा अरुणा रानी, प्रदीप कुमार का एक फिल्म परमात्मा। उजाला रेडियो है ये मेरे प्यारे सुनने वालों, और मुकेश जी की नगमाएं भरपूर आज प्रोग्राम में हम पेश कर रहे हैं। अगले मूवी का नाम, फिल्म का नाम है निर्लज, और निर्लज से गीत जो निकालेंगे नक्शलाल पुरी जी का लिखा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत गीत, वार है पिकम और तार है पिकम। कल्याण जी अनान जी संगीतकार मेरे प्यारे सुनने वालों, और मुकेश जी गाएंगे कि मेरी आरजू है कि मैं तुम्हें इतना चाहूं। एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

मेरी आरज़ू है कि मैं तुम्हें इतना चाहूं। मुकेश जी की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों, ये था एक नगमा नक्शलाल पुरी जी का लिखा हुआ और जिसका संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। फिल्म अटनी खती नख्तन सीवन तक मेरे प्यारे सुनने वालों 1978। और फिल्म का जो इंफॉर्मेशन मेरे पास जो है हाँ, और क्योंकि प्रोग्राम आज जल्दी से हमने सजाए हैं या हैपिक नीट सो फिल रिसर्च खदान हीर ओवर एंड दैट इज नेचुरली ही लड़ गया मैं, उसके लिए माफी चाहता हूँ। नॉर्मली तवीत एक अलस इस गीत के लिए मुझे माफ कर दो। अगले गीत की ओर आपको ले चलता हूं मेरे प्यारे सुनो, ये एक गीत है जो भी फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनी थे, जीता नहीं, और फिल्म का नाम मुक्ति। ये भी एक फिल्म जैसे कि निर्लज और जैसे कि कभी कभी सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा, अभी तक जितने गाने भी हम चलाए हैं सभी रिलीज हुआ मुकेश जी के मरने के बाद, और काफ़ी गीत नॉमिनी भी हुआ है और जीता भी, और उस वक्त तो हमारे प्रिय मुकेश जी भी हमारे बीच नहीं था। सो सुंदर एंड सो यामर, लेकिन उनकी खूबसूरत आवाज में गाया हुआ गीत जरूर से जरूर हमने भरपूर पसंद किए हैं, और आपकी सेवा में मैं पेश करने जा रहा हूँ एक आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत। राहुल डबरमन संगीतकार है। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। हार्ट ऑफ मिलियंस मायते मुकेश जी।

सुहानी चांदनी ये रातें हमें सोने नहीं देती। मुकेश जी का एक पॉपुलर सॉन्ग, फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनी, दर्द भरे गीत, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ, मुकेश जी ने गाए हैं, राहुल बर्मन की साज और संगीत पर, फिल्म का नाम मुक्ति, और मुक्ति 1970 का मूवी है। निकतिम सेवनन सेवन राज तिलक ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया है। डेकोरेट शशि कपूर, विद्या सिन्हा, बिंदिया गोस्वामी कादर खान और संजीव कुमार का एक फिल्म। चाहे आज मुझे ना पसंद करो, अगले गीत की ओर आपको ले चलते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, और ये गीत भी लामसीन तो, ये गीत भी निधि सनीत, ओ एक ताकत ना, कोई बात ना है, नीतालस का वेदन तो। इंदवर का लिखा हुआ एक नगमा दरिंदा फिल्म से निकालेंगे। मुकेश जी, कल्याण जी, आनंद जी संगीतकार, चाहे आज मुझे ना पसंद करो।

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

दिन बिक जाएंगे माटी के मोल और जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। हार्ट ऑफ मिलियंस माय ते मुकेश जी, और शुरुआत में साथ दिए थे सुषमा सरिस्ता, मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ गीत, मेरे प्यारे सुन वालों पॉपुलर सॉन्ग राहुल बर्मन की साज और संगीत पर मिलकर दोनों ने गाए। धर्म करम फिल्म का नाम, 1975 का ये फिल्म है। रणधीर कपूर जिन्होंने डायरेक्ट किया है, और इनके पिता राज कपूर जो प्रोड्यूसर है और फिल्म में भी काम किया है, इन पर भी ये गीत पिक्चराइज किया गया है। धर्म करम, मेरे प्यारे सुनो, ये उजाला रेडियो है और लाइफ एंड आर की वार के स्टूडियो रतनाम से स्वागत करता हूं आप सभी को। बैक टू द फ्यूचर पेश करता हूं। आज इस 22 तारीख जुलाई को रात्रि में 9 बजे तक मुकेश जी के नगमाएं, आज हमने आज सुबह मैंने जागा, मैंने सोचा अरे आज तो मुकेश जी का जन्मदिन है, हमारे बीच होता तो 103 साल आज मुकेश जी होते, उनका जन्मदिन, अफसोस हमारे बीच नहीं रहा। मैंने सोचा अनु मलिक जी का प्रोग्राम पोस्टपोन कर देते हैं, और आज जो कि आखिरी है वेकेशन से पहले हमारा ये प्रोग्राम, तो मुकेश जी के नाम क्यों ना भरपूर हम करें, इनके खूबसूरत गाने आप तक हम पेश करें और आप नगमाओं के साथ काफ़ी आनंद ले रहे हैं या आप बता रहे हैं व्हाट्सएप पर। अभी हम देखेंगे कि कितने और हैं व्हाट्सएप पर जो एंजॉय कर रहे हैं, और क्यों ना एंजॉय करें, मुकेश जी के गाने लाजवाब बेमिसाल है, चाहे वो दर्द भरे नगमाएं हों या प्यार भरे, जो भी गाने मुकेश जी की आवाज में वो दर्द था जो सीधे हमारे दिलों को छू जाते थे और अभी तक ऐसे है, कभी फरांदर ना हुआ है ना। Vandaag wil ik ook natuurlijk, collega, onze dierbare collega, सभी के प्रिय आरजे जी को, रशोदी जगरूप जी जिसे आप जानते हैं आरजे जी के नाम से, आज उनका जन्मदिन है, तो मेरे और उजाला रेडियो के पूरे टीम की ओर से आरजे जी को सालगिरह मुबारक हम कहते हैं, बधाइयां शुभकामनाइयां, और ऊपर वाला से उनकी लंबी आयु और तंदुरुस्ती के लिए हम नतुलक दुआ और प्रार्थना करते हैं। वहब मकारा स्प्रोक ऑफ द व्हाट्सएप मनोखमास हीरो प्राडियो आरजे, एंजॉय योर डे एंड वी लव यू। अगले मूवी मेरे प्यारे सुनोल, ब्रेक से पहले ये फिल्म का एक नगमा हमने पेश किया है, कुछ कहा नहीं लेकिन गीत मैंने पेश कर दिया था क्योंकि वक्त बहुत नहीं था। फिल्म का नाम प्यासा दिल, प्यासा दिल का एक और खूबसूरत गीत है, वो गीत त्रौंस रहा, ये दिल नशी नजारे करते हैं क्या इशारे, और यही मूवी प्यासे दिल जो 1974 का है, निहतिन फिरन से एक और नगमा निकालेंगे, जान निसार अख्तर जी का लिखा हुआ एक रोमांटिक सॉन्ग जो खयाम की साज और संगीत पर मुकेश जी गीत गाकर सुनाएंगे। पेश करता हूं मुकेश जी को।

महकती जवां चांदनी हो और चलती फिरती कोई रोशनी हो। जान निसार अख्तर जी का लिखा हुआ गीत, रोमांटिक सॉन्ग, मुकेश जी की आवाज, खयाम संगीतकार, मेरे प्यारे सुनने वालों, फिल्म अजनी हतिन फिर 1974, प्यासे दिल का नगमा। जगजीत कौर जी ने तारे क्या है और या इक्सियाली मा उम्ब केंद जिन्होंने ये मूवी में काम किया है, लेकिन गाने लाजवाब बेमिसाल है और हम आपसे झूठ नहीं कहेंगे, मैंने ये मूवी को नहीं देखा, सिर्फ गाने सभी मैं जानता हूं, लेकिन मैंने ये मूवी को नहीं देखा। एक मूवी जो बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप साबित हुआ और जो कि मैंने काफी बार देखे हैं और अगर अभी चले तो मैं फिर एक बार देखूंगा। फिल्म का नाम है रास्ते का पत्थर, मेरे प्यारे सुनने वालों, रास्ते का पत्थर, और ये फिल्म का टाइटल सॉन्ग हम पेश करने जा रहे हैं आनंद बख्शी जी, इनका लिखा हुआ गीत, मुकेश जी गीत गाएंगे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की साज और संगीत पर। मूवी का टाइटल सॉन्ग हियर ऑन यू आर। Het is bijna 4:05, mijn lieve Arisenolo. Sorry, 7 uur, almost 5 minuten, baki.

रास्ते का पत्थर किस्मत ने मुझे बना दिया, जो रास्ते से गुजरा एक ठोकर लगा दिया। मेरे प्यारे सुनो लो खूबसूरत गीत, द हार्ट ऑफ मिलियंस, मायती मुकेशी का गाया हुआ, आनंद बख्शी जी ने जो लिखे और जिसका संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ये फिल्म रास्ते का पत्थर मेरे प्यारे सुनो लो 1972 का है। निहंतीन ट्वीन सेवन मुकुल दत्त जी ने डायरेक्ट किया है, बिग बी अमिताभ बच्चन, लक्ष्मी छाया, शोधगोन सुदुर्गन सिन्हा, क्या नाम है लड़की का, नीता खयानी, हाँ जी नीता खयानी, प्रेम चोपड़ा, सुधीर, इन सभी का फिल्म है। ठीक सरे आठ का वक्त, सरे सात का वक्त है मेरे प्यारे से नौ चीज हाल फाख। कल रात को 8 बजे से 11 बजे यूली वकांसी से पहले मेरा आखिरी प्रोग्राम होंगे हियर ऑन यूआर दिल की आवाज। और दिल की आवाज कल हम पेश करेंगे 3 घंटे लगातार विद ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग्स। उम्मीद और आशा करते हैं कि आप मेरा साथ कल भी देंगे, क्योंकि अगले दिल की आवाज हम बनाने वाले हैं नए महीने अगस्त का 13 तारीख डेढ़ दिन जिस आज हूँ कल भी रहेंगे। एन एन मैंने कर 12 एंड 13 वेयर एन अचूलक 15 मेट सैटरडे नाइट फीवर। आज मुकेश जी के नगमाए प्लेलिस्ट को हमने फुल किया है और बहुत सारे मुकेश जी के गाने सोचा था एक सिलेक्शन करेंगे, लेकिन सभी गाने मुझे पसंद है तो काफ़ी बहुत सेलेक्ट हुए हैं 300 से ज़्यादा, तो उन्हीं में से गीत हम निकाल रहे हैं। और कोशिश करता हूँ मेरे प्यारे सुनने वालों नगमाएँ कुछ ज़्यादा मेरे भी पसंद का है, आज झूठ नहीं बोलेंगे। और आपको सुनाता हूँ यही उम्मीद और आशा के साथ कि आप भी शायद एंजॉय भी करेंगे। और जिस तरह से आप ऐप कर रहे हैं तो आप बता रहे हैं कि आप एंजॉय कर रहे हैं दिस डन मैनिक ब्लाई। अगले गीत मेरे प्यारे सुनो वालों मुकेश जी का एक फिल्म फेयर अवार्ड जीता हुआ गीत है, एक नगमा जो वर्मा मलिक जी ने लिखा और जो मुकेश जी गाएंगे शंकर और जयकिशन के साथ और संगीत पर। 1972 का फिल्म बेईमान से गीत हम निकालेंगे और मूवी का टाइटल सॉन्ग आपको सुनाने जा रहा हूं।

बोलो बेईमान की जय बोलो, हार्ट ऑफ मिलियंस महिती मुकेश जी की आवाज, फिल्म फेयर अवार्ड जीता हुआ गीत, वर्मा मालिक जी का लिखा हुआ, इन्होंने गाकर सुनाए हैं प्राथमिक म्यूजिक फन शंकर और जय किशन। मेरे प्यारे सिनेवालो, फिल्म का नाम बेईमान और मूवी 1972 का है, सोहन लाल कन्वर जी का प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया हुआ मूवी, मनोज कुमार मिस्टर भारत इन्होंने ये फिल्म में काम किया है, प्राण के साथ राखी प्रेमनाथ। उजाला रेडियो है ये मेरे प्यारे सिनेवालो, और काफी लोग एक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एंजॉय कर रहे हैं भरपूर। दिल से धन्यवाद, मुकेश जी के गाने सभी को पसंद है और इतने सारे गाने हैं मेरे प्यारे, इट विल सो फिल। मुझसे कहा गया है कि आप सुबह 6:30 तक प्रोग्राम बना सकते हो, दत्कानियाई रतन दत्कानियाई tot morgenochtend 6:30 maak programma, maar dat kan ik niet, कर सकता हूं लेकिन ik heb natuurlijk ook verplichtingen, तो वो फिलहाल तो नहीं हम कर पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि जितने भी गाने आज हमने जो सेलेक्ट की है और आप तक पेश नहीं कर पाए हैं, कुछ रोमांटिक सॉन्ग्स और कुछ दर्द भरे नगमाएं यही में से निकालकर हम पेश करने वाले हैं। दिल की आवाज में 27 अगस्तस, हाँ जी 27 अगस्तस दिल की आवाज का दिन है वो, और मुकेश जी का या स्वर्गवास होना 50 साल होंगे 27 अगस्तस, तो इनके गाने पेश करेंगे एंड वी वेट मार्किंग नो हम पार प्रोग्रामास, देखेंगे कैसे प्रोग्राम हम बना सकेंगे और जिस तरह से प्लानिंग है उसी तरह से उसी के हिसाब से प्रोग्राम सजाया जाएगा। एक टाइटल सॉन्ग की ओर आपको ले चलते हैं मेरे प्यारे सुनो, ये भी बहुत पॉपुलर सॉन्ग मुकेश जी का है, राजेंद्र कृष्ण जी का लिखा हुआ एक गीत है और कितनी सच्चाई है भी इस गीत में। कल्याण जी अनाजी संगीतकार मेरे प्यारे सुनो वालो, 1978 का फिल्म का फिल्म कहानी किस्मत की से हम निकालेंगे मूवी का टाइटल सॉन्ग।

यह ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, कहानी किस्मत की, मायती मुकेश जी की आवाज में गीत आप सभी ने सुने, और ये फिल्म ये फिल्म कहानी किस्मत की 1973 का है। निहत इंद्रियन सीवन रजेंद्र कृष्ण जी का लिखा हुआ गीत, और संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। अर्जुन हिंगोरानी ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया है, धर्मेंद्र रेखा भारत भूषण अजीत रजेंद्र नाथ का एक फिल्म। मुकेश जी का एक और पॉपुलर सॉन्ग की ओर आपको ले चलते हैं। वैसे तो ये गीत दर्द भरे गीत में गिना जाता है, लेकिन इसमें एक बहुत ही सच्ची बात छुपी हुई है, समझने वाले तो समझ जाएंगे और ना समझे वो अनाड़ी है। मजरू सुल्तानपुरी जी इनका लिखा हुआ गीत, मुकेश जी गाएंगे नौशाद के साज और संगीत पर। 1972 का फिल्म तांगे वाला से हम ये नगमा को निकालते हैं।

द हार्ट ऑफ मिलियंस, मायती मुकेश जी की आवाज। मेरे प्यारे सुनने वालों, कर भला होगा भला और अंत भले का भला। मजरू सुल्तानपुरी जी इनका लिखा हुआ गीत, संगीतकार नौशाद, फिल्म तंगे वाले जो 1972 का है, हमने नगमा को निकाले हैं। नरेश कुमार मूवी का प्रोड्यूसर डायरेक्टर, राजेंद्र कुमार मुमताज का एक फिल्म। मेरे प्यारे सुनोल, इस घंटे का आखिरी गीत पेश करने जा रहा हूँ, वर्मा मालिक का लिखा हुआ नगमा। आप मुकेश जी की मुखाने सुनेंगे एक डर भरा गीत, ये भी है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल संगीतकार, फिल्म का नाम संतान, फिल्म फन जितेंद्रा और रेखा। इस गीत के बाद ब्रेक मेरे प्यारे सुनोलो, और ब्रेक के उस पार आप सभी से फिर हम मिलेंगे।

भरा नादान वही है जो समझे नादान मुझे, कौन कौन कितने पानी में सबकी है पहचान मुझे। खूबसूरत गीत मुकेश जी की आवाज, मेरे प्यारे सुनने वालों, वर्मा मालिक जी का लिखा हुआ ये नगमा, जो फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनी भी थे और जीता भी, शंकर जयकिशन संगीतकार, 1970 का मूवी फिल्म पहचान से खूबसूरत गीत निकाला गया है। सोहनलाल कन्वर जी का प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया हुआ मूवी, जिसमें मिस्टर भारत मनोज कुमार और बबीता जी ने काम किया है। इन दोनों के अलावा द ग्रेट बलराज सानी, साइलिस कुमार, चांद उस्मानी, इन सभी ने ये फिल्म में भी काम किया है। मेरे प्यारे सुनो, ये है बैक टू द फ्यूचर। 14 मिनट गुजर चुके हैं, वो भी 8 बजकर, लाइफ एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रोटरडाम से ये प्रोग्राम पेश कर रहा हूँ और आखिरी घंटे में हम आन पड़े हैं। रात्रि में 9 बजे तक आपका साथ हम देंगे हमेशा की तरह। और आज प्रोग्राम, क्योंकि आज मुकेश जी का जन्म का दिन है, अगर जिंदा होते 103 साल, फिलहाल तो हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन इनकी खूबसूरत यादें और खास करके संगीत के जरिए आप तक आज मैं ये प्रोग्राम पेश कर रहा हूँ। मुकेश जी को हम याद करते हैं मिलकर। और प्रोग्राम से जुड़े हुए व्हाट्सएप किए हैं हेरेंद्र जी और चित्रा जी, अहित मार्सब्रुक, अम्सलफीन का सुशीला चंद्रिका सिंह जी, अल्फनंद रैन, निर्मला डंकीवेल, स्कीवनिंग का भैया लक्ष्मण जी और लक्ष्मी जी हमारे दिलों में है, एम्स्टरडम आईवी जहांगीर डंकीवेल, स्वाग से मफराओ मरगरी जी, हेरवाल्डो और शरीदा डंकीवेल एंड एक डेंका यूली, डनाग शहर का मिक डंकीवेल मिक, अम्स्टरडम सेंट्रम का प्रभा जी, ब्रेडा का मफराओ एंड मनेर बिहारी, ग्रोनिंग शहर का बेटी जी, अलमेर का टोनी इसरी बोले मोटर पे जाए घरे घरे जाते रहते तो कि काम नया नीला, ममेड ओर्चिस, दनाग शहर का इफोन डाउलट टंकीवेल, लेडर डोरब का स्वागरी सरवन और आपके परी, अलमेर बायत का स्वागरी राज और सरहज आरती नंदन, अम्स्टरडम का जेनी, आप सभी को डंकीवेल डंकीवेल डंकीवेल, आप भरपूर एंजॉय करें, मजा ले इस प्रोग्राम के साथ। बस यही उम्मीद और आशा के साथ प्रोग्राम को हम सजा रहे हैं। जो तुमको हो पसंद वही बात हम करेंगे, अगर तुम दिन को कहेंगे रात तो हम रात भी कहेंगे दिन को। इंदवर साहब जी का लिखा हुआ ये रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, मुकेश जी गाकर सुनाएंगे। कल्याण जी अनान जी के साज और संगीत पर ही रॉन यू आर बैक टू द फ्यूचर में।

जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। हार्ट ऑफ मिलियंस मायते मुकेश जी की आवाज, इंदवर का लिखा हुआ गीत इन्होंने गाकर सुनाए हैं कल्याण जी आनंद जी के साज और संगीत पर। 1970 मेरे प्यारे सेन वालों ने हतीन सीफ तक का फिल्म सफर से हमने नगमा को निकाले। आसिद सेन मूवी का डायरेक्टर, राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और जिन पर यह गीत पिक्चराइज किया गया है, फिरोज खान मूवी में काम किए हैं। ओह वाओ, ब्यूटीफुल सॉन्ग की ओर आपको ले चलते हैं। एक नगमा इनवर ने भी जो लिखा, एंड वंस अगेन कल्याण जी आनंद जी संगीतकार हैं और गाने वाले, जिसका प्रोग्राम हम सजा रहे हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, द हार्ट ऑफ मिलियंस मायते मुकेश जी। फिल्म का नाम होली आई रे, ये भी 1970 का मूवी है और खूबसूरत गीत पेश करने जा रहा हूं ये नगमा।

मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम संवार दो, प्यासी है ये जिंदगी और मुझे प्यार दो। द हार्ट ऑफ मिलियन समायते मुकेश जी, खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग इन्होंने गाकर सुनाए हैं। इंद्रवर का लिखा हुआ ये एक नगमा, संगीतकार कल्याण जी अनान जी और फिल्म का नाम होली आई रे। होली आई रे 1970 का मूवी है, 1970। डायरेक्टर मैं देखता हूँ हर्षुक भट्ट जी और माला सिन्हा, प्रमेंद्र जी का एक फिल्म जिसमें बलराज सानी भी है। वक्त इतनी रफ्तार से आगे निकल रहे हैं मेरे प्यारे सिने वालों, डेट खान सो स्नेल और गाने लाजवाब बेमिसाल मुकेश जी का सेवा में जो पेश हो रहे हैं हीर ऑन योर फेवरेट उजाला रेडियो। पुजारन फिल्म का नाम अब की बार जिसमें से गीत हम निकालेंगे। पुजारन एक फिल्म मेरे प्यारे सिनेमा 1969 का है, नीहति नेहनन सेसख। आपका चहिते पॉपुलर सॉन्ग मुकेश जी का गाया हुआ पेश करने जा रहा हूं। ये एक प्यार भरा नगमा भी है, एक रोमांटिक सॉन्ग, मदन जी का लिखा हुआ और नारायण दत्त जी की साज और संगीत पर मुकेश जी गीत गाएंगे ये नगमा।

मेरा प्रेम हिमालय से ऊंचा और सागर से गहरा प्यार मेरा। हार्ट ऑफ मिलियंस मायती मुकेश जी की आवाज, मेरे प्यारे सुनो लो ये खूबसूरत प्यार भरा रोमांटिक सॉन्ग मदन जी का लिखा हुआ, मुकेश जी ने गाकर सुनाए हैं। नारायण दत्त जी के साज और संगीत पर फिल्म का नाम पुजारिन, और पुजारिन फिल्म नेहती नेहन सेसक का है, 1969। मेरे प्यारे सुनने वालों, फिल्म का जो डायरेक्टर है धीरू भाई देसाई और विजय दत्त, रहाना सुल्तान का एक फिल्म। सत्याजी अटाम सदाम धंकी वाला आपके ऐप के लिए। शैलेंद्र जी का लिखा हुआ आपकी बार एक दर्द भरे गीत जो मुकेश जी गाएंगे शंकर और जय किशन के साज और संगीत पर। फिल्म का नाम सपनों का सौदागर और ये फिल्म 1968 का है। नीहतीन आख्तन सिस्तख मुकेश जी, वो जिंदगी ऐ मेरी बेवसी, अपना कुछ भी ना था और अपना कोई नहीं।

जिंदगी है मेरी बेवजी, अपना कोई ना था अपना कोई नहीं इस दुनिया में। मुकेश जी की आवाज, दर्द भरे गीत शैलेंद्र जी का लिखा हुआ, इन्होंने गाकर सुनाए हैं शंकर और जय किशन के साज और संगीत पर। सपनों का सौदागर फिल्म का नाम, मेरे प्यारे सुनवालों, सपनों का सौदागर 1969 का मूवी है। नीहति नीहनन सेसख, महेश कौल जी का डायरेक्ट किया हुआ, द ग्रेट शोमैन राज कपूर और द वेरी यंग, और उनका पहला जो मूवी हेमा मालिनी जी, इन दोनों ने काम किया है। 10 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, सारे 8 बजकर। कल रात्रि को मॉर्गन आवंट फन 8 tot en met 11 इन द आवंट, रात्रि में 8 बजे से 11 बजे कल दिल की आवाज पेश करने चले आएंगे। यहाँ स्टूडियो रोटरडम से वो प्रोग्राम पेश करेंगे। मेरे प्यारे सुनने वालों, उम्मीद और आशा करते हैं कि भरपूर आज की तरह आप ही मेरा साथ देंगे। फिलहाल तो एक और डर भरे गीत की ओर आपको ले चलते हैं, और इसमें इतने सारे बातें छुपे हैं, अगर आप इसे समझे तो कितनी खूबसूरत गाना है ये। कमार जलाला बंदी ऑफ द वेल, कमार जलाला बरी जी का लिखा हुआ गीत, मुकेश जी गाएंगे वो भी कल्याण जी अनान जी के साज और संगीत पर। और कमाल का गीत कमार जलाला बड़ी जी ने लिखा फॉर द फिल्म उपकार, मेरे प्यारे से नॉलो उपकार, 1967 का मूवी ये नगमा।

दीवानों से मत पूछो। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, और ये गीत भी फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनी थे लेकिन जीता नहीं, अफसोस। ये था फिल्म उपकार का एक नगमा मेरे प्यारे सुनने वालों, कमार जलालाबरी जी का लिखा हुआ गीत, मुकेश जी ने कल्याण जी आनंद जी के साज और संगीत पर गीत गाए हैं। उपकार 1967 का मूवी है, निहतिन सेवन सेसख, डायरेक्टर और एक्टर मिस्टर भारत मनोज कुमार, इन्होंने ये फिल्म में काम किया है आशा परीख जी के साथ, प्राण, प्रेम चोपड़ा, कमिनी कौशल, कन्हैया लाल। इस गीत के बाद चलो एक रोमांटिक सॉन्ग हो जाए, हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ नगमा मुकेश जी अब की बार गाएंगे शंकर जयकिशन की साज और संगीत पर, फ्रॉम द मूवी संगम मेरे प्यारे सुनने वालों, संगम 1964 ये नगमा।

ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिले मकसूद। हार्ट ऑफ मिलियंस मायती मुकेश जी की आवाज, हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ ये रोमांटिक सॉन्ग मुकेश जी ने गाकर सुनाए हैं शंकर जय किशन के साज और संगीत पर। फिल्म का नाम संगम, मेरे प्यारे सुनने वालों 1964 का मूवी, निगेटिन फिरन सेस्सक का फिल्म, जिसका प्रोड्यूसर डायरेक्टर और एक्टर तीनों ही द ग्रेट शोमैन राज कपूर, राजेंद्र कुमार के साथ मूवी में काम किया है और विजयंती माला। धीरे धीरे वक्त निकला जा रहा है मेरे प्यारे सुनने वालों, एक दो नगमाएं और उसके बाद हम यहां से रुखसत होंगे। आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ एक मतलबी दर्द भरे सॉन्ग पेश करने जा रहा हूं, मुकेश जी गाएंगे अपने दर्द भरे आवाज में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की साज और संगीत पर। फिल्म का नाम दो रास्ते और ये फिल्म 1970 का है, निगेटिन सेवन। दो रंग दुनिया की और दो रास्ते,

दो रंग दुनिया के और दो रास्ते। मुकेश जी, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत गाकर सुनाए हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की साज और संगीत पर। 1970 का मूवी दो रास्ते से हमने नगमा को निकाले। प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये फिल्म दो रास्ते का राज खोसला, राजेश खन्ना, प्रेम चोपड़ा, मुमताज बिंदू, बहराज सानी का एक फिल्म। मेरे प्यारे से वक्त आ गया है कि मैं आखिरी गीत पेश करूं। बस यही उम्मीद और आशा करते हैं कि आज का ये प्रोग्राम जो मुकेश के नाम हमने किए हैं बैक टू द फ्यूचर, आप सभी ने भरपूर भी पसंद की है। बैक टू द फ्यूचर हम बनाएंगे फिर 12 तारीख अगस्त को, 12 अगस्त को मैं तुरख मैथ बैक टू द फ्यूचर। मोरखन आवन हमें करवाया मैं दिल की आवाज। तो आज के लिए आ गया, रहा फूल तो फिर खिलेंगे, और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर फिर मिलेंगे। सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और खुदा हाफिज। टेक केयर और रिमेम्बर, आई लव यू ऑल।

तैयार हो जा। सुनने वालों, उजाला ला रहे हैं उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में। फूड, म्यूजिक, डांस, शॉप, मार्केट, कल्चर, फैमिली एंटरटेनमेंट, टेस्ट, बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स। तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले। ब्रासा फेस्ट जादादाग 29 en zondag 30 augustus. GIA Event Center Den Haag mee. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है. तू बता दे सबको इसे बताते हैं. ओ तो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके हैं Ujala Radio और Ujala Radio साथ में ले जाइए. तू चाहे जहाँ पर जाइए, तू जान है तो Ujala Radio.
3: Ujala Radio पर संगीत का सफर जारी है.

अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

यूवा उजाला रेडियो है, कॉफी चाय मिदा शो यहां से शुरू किया गया है। आपके वास्ते अंबेज लात मार हम लोग आ गए रहेगा। चलिए प्रोग्राम में हम आपको सुनाने को जा रहे हैं किरण केदार के आवाज में, हम किरण केदार मेड बैंड ओकावेज ऑफ उजाला ब्रासाफेस 29 एंड 30 अगस्त जिया इवेंट सेंटर में। यस ब्रासाफेस।

जिले प्रोग्राम में रोशना बाल गोविंद की आवाज में हम आपको नामा सुनान गुजार है। रोशना बाल गोविंद उजालास ब्रास फेस्ट और भी 29